के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफान गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्री चौक प्रोपाइटर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 98621 37744 र 98153 87775।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी है। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: お前です。
1: 王子、王子、王子。
0: おでかおってやれ。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
2: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो
2: तू चार भी क्या लिखवा ले बुका अरे रे ए ए आ जिगर पलट

0: ए लाहौरे दाई
1: के हो कान्छी
0: लाहौरे को फैशन
2: ए लाहौरे दाई
3: के हो कान्छी
2: लाहौरे को फैशन कसरे
3: आ त्यस्तै जावा ल भन्नु त
2: ल ल